0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: दास और रेडियो अमन। दास और रेडियो अमन।
2: बारिश में ड्राइवर हजरात एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि जगह जगह बारिश का पानी कड़ा होता है, जिसकी वजह से लोगों की कपड़े खराब हो जाते हैं और फिर राह चलते लोग अक्सर बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती है, इसलिए रफ्तार धीमी रखें और एहतियात करें। राह चलने वालों से भी इल्तिमास है कि बिला वजह सड़क पर जाने से गुरेज करें। अगर जरूरत ज्यादा हो तो गाड़ी न होने की सूरत में सड़क क्रॉस करें। जिम्मेदार शहरी बने और हुब्बुल वतनी का सबूत दें। शुक्रिया।
3: ये पैगाम आपको रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क की तरफ से पेश किया गया है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अमन।
4: رزای چې خپل وطن د ګنګای نه صفا اوساتو، چرته هم ګند بغیر د سوچنا پلارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمه بلدیات لخوا ټکلی شوی ځایونو ته ورسو، او خپل ګلای کوڅه صفا اوساتو، ځکه چې صفایی د ایمان حصه ده.
3: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.

हाँ जी बिल्कुल मेरे वाले तुसे काल शिकम दे आर रहो निकना खुला रहो निकना तुसे इंतजार करो है क्या ना हाँ बिल्कुल सरेंगे तुसे वीरी तुसे पैसे वक्त दला रहे हम प्रोग्राम के रुतला से मैसेज दला रहे हम और द काल दला रहे हम अब बिल्कुल रज़े बा खुला शिकम द लग करना लग बा इंतजार करो है हाँ बिल्कुल तुसे काल साथ में मैसेज शिकम दी अब प्रोग्राम के शरीक हो और फेसबुक दला रहे हम सुमरा मीनावाल दी और बिल्कुल प्रोग्राम वो शेयर करवाए हम दर सरा और कमेंट सेक्शन दो बुद्रु में अमुस सरा वो प्रोग्राम के शिरकत करवाए और द कमेंट जरिए सरा चुकुम द अमुस सरा भरोसे प्रोग्राम के और मुसरा बखला अजीरी चुकुम दो आगा लगावे और बिल्कुल तो से कमेंट्स चुकुम दी तो सर राय आप प्रोग्राम के शरीक कहो अब बिल्कुल दगे हवाले सरा और चिकचिरे और सुमर मीनावाल दिया वो तो टोल सब आयु के ना नो जे तुस्त मौका मिलाओ या तुस्त ऑप्शन देर कर लोशी के ना और जी बिल्कुल द यो शाय चिकुम द के ना नो दा बो जिंदगी के तप्रेश दे नो बाबा तत्सा शप्रेश दे के ना कि आगे सराय तो जिंदगी चिकुम दो आकामयाबी जी के ना और बिल्कुल मीने वालो तो से हमरो से प्रोग्राम की मुसरा शिरकत करो और जी बिल्कुल मीने वालो प्रोग्राम की बो यो संदरे तरफ ता हम द्रुमु और संदरे नपास चिकुम दा रुसुबो प्रोग्राम के और तो से काल ये तो से मैसेजेस चिकुम भी अब शरीक करो हाँ बिल्कुल दगी उम्मीद सरा चे दागा सहार चिकुम दा शोआई चिकुम दी नो मुझे मीने वाला तो वो सब पैगाम रोड़ाई और सब पैगाम भी विरकड़े जका चेहर यो सहार चिकुम दा चे शपाती रेजी के ना नो हर सहार देस्तर के शोआई चिकुमे दी के ना यू नवा पैगाम चिकुम दरोड़ी मुझ मीने वाल वो नवा सा पैगाम रोड़ी मुस्तरा और मुस्तरा बसो शरीक कई और दे आवाले सर बसो भी आई चे मुझ जो खला जम दुन चिकुम दा के ना तो जिंदगी की युवा दास मुका मिलाऊशी तो ओ ये लशी चे दा शाय चिकुम दा यो शाय चे दा आब तब प्रेज दे नो खपल जिंदगी के नो आब सशवी चे तो से प्रेज दे अर सड़ी बखपल राय भी दे हर मीने वाल बखपल राय भी आब रुद्रमी चे मुझा जिंदगी बेहतर कवलो दे परा मुझ बो सशा प्रेज दू चे आगे सर मुझ जिंदगी बेहतरीन तरीके से रहती है।

0: हाँ जी बिल्कुल मिनवाला संदरा तो से उरे उम्मीद दे तो से खुश होई हवेर कोल प्रोग्राम की ओजल वी आर टोल मिनवाला तो हर कले में स्टडी माशे प खैर रगले हाँ जी बिल्कुल फेसबुक दलारे हम मलगरी चुके हमने कहा बिल्कुल रगली दी रवान दी और मैसेज दलारे हम रवली दी अब बिल्कुल तो आशे वो लग बंदे चुके हमने इंतजार करवे हाँ प्रोग्राम के मुंग सर रद्रु में देखा अल्लाह लारे हाँ बिल्कुल प्रोग्राम की विरसू दे प्रोग्राम फर्स्ट कलर साइड तब विरसू को सुबह चसोकता और देखूं जरा मुंग सर बहुत सर शरीक के जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सोकती रुसरा देखूं जुना आफिया वजीरा प्रोग्राम के हर कले तो स्टडीमाशी पो खेर रोक ले सरंगे शपा पो खेर तेरा शोई दो बस चश्मा पो खेर तेरे शिवी प्रोग्राम सार जेरे की सरो वड़ी शुरू ना दे प्रोग्राम आवरे दला प्रोग्राम दे शुरू ना आवरे दला
1: ना उसे चिकार अपनी करी वाह
0: गाना दे ओवरे दला ओ सब शरीक का हीरो सरा वालेकुम अस्सलाम

0: ओके जी तेरे साथ मेहरबानी हो, थैंक यू सर अमर जी। खादा का शान चेकम दे हाई कब नहीं की मंग सर हाई गोल्ड ब्यूटी क्रीम दे दी दिन अलावा हाई कस्मेरिस कब नहीं की मंग सर चेकम दे आगा फेस वॉश थे जमोगा द अनार अब दिलिंबू वाले उडेर क्लासिक फेस वॉश थे जी डेर मजेदार फेस वॉश थे दगा शान चेकम दे जमोगा हाई कस्मेरिस कब नहीं की शैम्पू दे मंग सर दिन अलावा चेकम दे हाई कस्मेरिस कब नहीं की मंग सर हर्बल ऑयल ले जी नो इनशाला इनशाला ताउस तब डेर बेहतरीन रिजल्ट मिलावेगी जी। कॉलर पलान कुम चुसूक दी कम देना। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाज अली ममन साहब, प्रोफेसर नियाज अली ममन साहब, संगे राखले
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआ गानी जरूरत सो खबर के दकम देना।
1: जो वतन दोस्त खटक खबर गाँव करक नता सरा मखतिया।
0: हाँ वतन दोस्त साहब खे बराबर खैरियत थे
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: पेन जायम आओ दर्दुल गोली दी।
1: अच्छा दा के दबी की सुम रही
0: दा दबी की चिकम दे गदीरश गोले हुई
1: दा बोरस की हुआ 24 घंटे की हुआ गोले अच्छा
0: ना जी ना ना दा बोरस की दरी गोले अच्छे रोड़ा
1: दरी गोले अलग संगलों के कल कल चिखार हो कल से दर्द रहता मखसूस ये खास करके जुड़ून
0: के जुड़ून के न दा असल की चिकम दे दी की बस जख्मों ना रागली करना। गोरा बदन के दर्द दस दवजी की इंसान कल दव पी जनी नो बे इलाज आसान छी। गोरा बदन की अड्डू की दर्दू ना या ची अड्डुको की जख्मुशी सही शु दर्दू न कही या चिकम दे अड्डुको की जरासीमुशी नो दर्दू न कही या अड्डू की कमजोरी शी या अड्डुको की द कैल्शियम कमे ने छी। इंसान बदन की कैल्शियम दा से दे कना लकदा चिकम दे अड्डुको तो ताकत और के इंसान बदन की कैल्शियम खत्म छी कना लक गुब्बारे न छी हवा उबासे अटेर न हवा उबासे और कना नो बस इसम बात रे छी नो दंग शान चिकम दे लक जमुंग पेंजाइम बे मुंग पयदु से फार्मूला की जुड़कड़ी दी छी मिसाल दा पर अरस जमाने चिकम दे आगा कार कई पूछ हुए
1: नमा के ते संगने मिसकलु न रकई प्रोफेसर साहब।
0: हां हां
1: दा संगले माता मिसकलु न रकई मा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर हम की दा करना यो दृश्यलो पर मशवरा ओकर बता करा छी जी दा मेडिकल इस्तेमाल का हो अच्छा नशा वाले माता पर केस कर यार बस अगले टाइम पे जो गोलाई से मलाऊ ना जुड़ू ना मिट्टी जाती उसमें वे लग तबर हो वाला तबर हो पीड़ा ने कितना कर बगाए आतर बगी सरा मिले लड़की होती रह जिधर का नाल दा घट घट लड़की पर तो उन उस जुड़ू ना दबिया चीज ऐसा ना जुड़ू ना पल मिस कर लूँ शुरू कर
0: सही सही सही इंशाल्लाह टिक बशीदा खैर सरा खा ठीक
1: दा। हाँ दा पेंजाइम दा करा
0: पेंजाइम खुद ही सरा बाला इपोजाइम शरबत इस्तेमाल है चिमेदा दी वो तो ठीक ही नहीं दी गोलो असर बती थी ठीक है लाइपोजाइम
1: लाइपोजाइम
0: मैदा बजरी ज्यादा बराबर ही नदी गोलो असर बती थी पूछ में कहना
1: करक बाजार की कम दुकान की मिलेगी जैसे दुबई मार्केट की मिलेगी
0: दुबई मार्केट की लांदी बेसमेंट की फारूक

डाला जाता है। इसी तरह कान कुन धात को और चमड़ा सांस खाल को बनाता है। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में ना डाली जाए

जी अर्जुन को मुतासर कर दे मुंगसरा पार्टिसिपेट खबरी से यानी 0336-9000-764 बांधे और बिरसरा बिरसरा दा खुली शान सॉन्ग हम तासो एंजॉय खोली से अर्जुन को तासो संगा मुंगा दो गानो की याद सते हो कना कबस ती सिर्फ बेवा गिंटा पूरी भी और ब्यारा ने लाड से जब मुहेर के

अकबर मार्केट की मौजूद दे और अशा कर दरे कि अंकल कस्मेटिक सरा पत्र कोई के बताओ तो फहम कॉस्मेटिक सर मिले वीजी पौसना सर सही शो और दे सरा सरा तस्त तो मिले वीजी छुटते केबल तस्त तो नदी पनोस की करोड़ा के इम्तियाज कॉस्मेटिक सर मिले वीजी दिन लवाहर मजई रोड बने बताओ तो मिले वीजी इबाद इन ब्रदर्स कॉस्मेटिक सरा और विरसरा विसरा बतोस तो मिले वीजी पो टीरी के हाजी जलाल कॉस्मेटिक सर हमारी मार्केट है किसी शो अर्जुन को दाइड्रेस बिल्कुल कब्याम तस्तु सो मुश्किल है नो तस्तु बिल्कुल मैसेज को वाली सही था।

0: नेक्स्ट कॉलर आपसे शुक्र सुमुंग सर सुख थी। अस्सलाम वालेकुम। जी दावत मुंग सर सुख खबर के विधि किम जना सुख खबर के ऐजहान द तुर डालना। अच्छा ऐजहान
1: इनोम
0: बगे होती गुरा तो मु दाह बर कड़वा चाहा दी बुन दो खाल के दोपहर दा बलर दे हाँ जदी कुना की नवा सुख अंतिर गरीब दे कुना था और आगे खुदा खबर कवल अच्छा शाह खो खैर दा बनु हाल को दे पुरा दा करक या नष्ट दारसी बो इंशलान करीब बुरसी खु या नष्ट यो ईर यदि के ना दस आड़े पसे रसीदा ही नशी सही तो न न न या ना गाबु जाओ रुस तो बिया इलान देता कहो पुरी डूबा दे दासी ना ठीक तक ना फिलहाल तो सी इस्तेमाल कई तुस्त रिजल्ट देर की दासी बनू तो हुए जे कलर ड्रार सी नो इंशाल्लाह बे तुस्त जब ऐलान कहो बब डेर खलक में खबर है जे डेर खाल को तपो चारे बनी वीरशी सही दो अच्छा इनोम ही पके वाह इनोम दे पर इनोम दे पर दुम रगा वकड़ा मेहनत वकड़ा ना इनोम देर की इनशाला इनोम तमा खप के ज्यादा से उड़ के उड़ के इनोम बखेर जख पल देर कहो पद की सही दो ना जब बे देर कदे के बजे नमा देर कर जिन्हें कॉस्मेटिक्स ला तरफ अच्छी से मतलब कुम उड़ी के उड़ी के नमा तो आप देर कहो सही ना हाँ सही था यू जहान मन ने कहा थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सो वेरी मच।

0: वेलकम वेलकम रेहान भाई जमान द खुरबारंडी वाला संग है सलाम दू पर रिहा दिया बडाना रेमल पठाना मोनी था और महा आबरू सब आसिया आफिया हानिया वफा तातो वाया परफ्यूम वाला सलाम एट्स मी अनु पठाना ओके जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच जहान मन ना सलाम टू आजिम कली की लाए बहान दा दुरहने मां मां उम्मीदा दम तोड़ जाती है हर शिकायत लबों पे आकर दम तोड़ जाती है हर शिकायत लबों पे आकर जब मसूमियत से कहते हैं मैं क्या मैंने क्या किया है जमान दुआ दुआ दा दरता ची अल्लाह द जर जरा
1: Basta da
0: ella, ella, ella.

खास सही रहती तक अरसमी अनु बना ना ऐसे मोनी स्कूल प्रेस दे चिल्ला जैसे गई तो वका नसियात हुई तो वका।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये पदशा पर सीधे तशा हो खस्ती थी
1: जनाते से तार खाना पशा पर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा पर उबरे
1: बिल्कुल तार खाना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर उड़ल से रिकड़े दी वो स्टोल कुर वाला नकवासोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर से रबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून लाकी गेट जान से बे गाले पर शे मार्किशे देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सारा उधर से मिला भी जी।

0: कारण।
1: मुस्तकबिल खुद नहीं बनता, मुस्तकबिल के लिए आज फैसला करना पड़ता है। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में फाल 2026 के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले जारी हैं। अपने मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम आज ही उठाएं। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए www.kuk.edu.pk/admissions-open। The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क जीवन रंग अमन।
1: उसकी सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
2: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल पिशावर बन्नू लकी करक डी आई खान खैबर पख्तूनख्वा पिंडी इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओस उस गंजे शवी भी याए द सर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तिल पखपल सर बाने मालश की नो दद पसर बो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तिल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण औ उजद कवि दे सर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636। अबल खुश खबरी खुश खबरी, हुज़ैफ़ा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
2: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल पिशावर बन्नू लकी करक डी आई खान खैबर पख्तूनख्वा पिंडी इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओस उस गंजे शवी भी याए द सर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तिल पखपल सर बाने मालश की नो दद पसर बो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तिल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण औ उजद कवि दे सर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

0: जाने जहाँ मिले आपको तफरी,
1: जहाँ मिले आपको मदमाज,
0: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
1: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
0: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

दरमान होम्योपैथिक सेंटर करक कचरतासो पदसे मरस के मुब्तिला ये किपा आगे के बवासीर पेस्टोला यानी खूनी दाना प्रास्टेट द गुर्दे पत्री द त्रिहि पत्री थायराइड ग्लैंड यानी कदुगाड़े रसूले ट्यूमर अर्कुन्निसा और दस्तरगो पर्दे छिपनोरो जायुनों के डॉक्टरानो तास्ता द ऑपरेशन वेलेदी नुतासोराशे दरमान होम्योपैथिक सेंटर था के अल तक डॉक्टर मुस्तफा कमाल आर एच एम पी डी एच एम एस डी आई होम डी एस सी बी एच एम एस द होम्योपैथिक द दुनिया यो तजर्बाकार डॉक्टर बतासो इलाज बगैर द ऑपरेशन द मेडिसन पर जरिया बांधे कई और देना इलावा बेऔलादी मर्दाना कमजोरी जनाना पोशीदा अमराज मैदे अल्सर और द मैदे जुमला अमराज और द शुगर मुकम्मल इलाज ब्लड प्रेशर और द जड़ जुमला अमराज शामिल।

डेंटल डॉक्टर जुबेर कमाल से होम पदरमान होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के मौजूद हुई। ददरमान होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर ना खपल मयारी इलाज तला सके। नूर मालूम दा पारा तासु डायल कवले शे 0331-12-12-413। पता दरमान होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर नेस खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर ता मखामा। दरमान होम्योपैथिक सेंटर स्टासो दा सेहत जाम।

0: चाहिए हुआ
1: बिल्कुल मस्त लगे सही लोग ठीक ठाक मैंने चाह कमेंट करो जरूर चिकन निकाना मिश्ता मिश्ता चिकन निकाना जरूर मार्शल और चलिए इंजीनियर एम एस डी ठीक ठाक से सर्च के साइड हो
0: सर पता कुर्बान वका मखपल
1: सोचे आगे ना गुल ले जी दिखे तो गुलशन अभिता दसरा प्रश्न में दसरा प्रश्न में वर्ताओं के दसरा प्रश्न में वर्ताओं के दस्ता तस्वीर भाई उमस के लगाओ माँ जबरदस्त ओके ओके साइलेंट
0: वक्त पमाइक बंदी खांदू
1: अच्छा साइड साइड
0: अंदाज पानी उड़ा उल दाई शो कवि हर वक्त पमाइक बंदी खांदू कवि
1: यार गुलाले गुलाले लोए खदा शदा से